गजल कम से कम 50 वर्ष पहले की अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई है, जबकि उर्दू लुगत में वहाँ को वहाँ को वहाँ और यहाँ को यहाँ।

0: नहीं लाल, अगर हमारा ये राज फाश हो गया तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। फौरन इन लोगों को ढूंढना।
1: आखिर सुमेर मेरी अपनी ही औलाद है,
0: लेकिन उसके साथ वो हराम की औलाद भी तो है।

0: डार्लिंग, पिछली बार जब इन्हें देखा तो मांग में सिंदूर नहीं था, अब है।
1: शायद इनका दिमाग ठीक नहीं है।
2: नसीब ठीक नहीं है, पति होके भी हमारे लिए पराए जैसे हैं।
3: पिताजी तो अपने आप को भी खो चुके हैं, उन्हें तो अपना नाम तक याद नहीं है।